0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।

0: सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulis, in New Delhi today. Mr. Christodoulis arrived in New Delhi yesterday from Mumbai. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. The President of Cyprus is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Constantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vaftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulis to India in his current capacity. The first international Big Cat Alliance Summit, which was scheduled to take place in New Delhi on 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been decided that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Burhan, alias Arjuman Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror attacks in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college in Gojra, Muzaffarabad, was targeted when he came out of his college yesterday morning. The attackers fired multiple shots at close range. Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCTC, has announced the launch of the upgraded Golden Chariot luxury train for the 2026-27 tourist season, introducing enhanced onboard amenities and promotional offers for travellers. In a statement, IRCTC said that the Golden Chariot, known for showcasing the rich cultural heritage and scenic landscapes of South India, returns in a refreshed form, combining traditional elegance with modern comforts. The train features redesigned interiors, upgraded cabins with plush furnishings,

0: क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन

0: करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार भी का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम

0: 7 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora.

0: सामाजिक पहचान दृढ़तापूर्वक रक्षा हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी। यह प्रयास महापुरुष श्रीमंत शंकर देव महापुरुष, श्री माधव देव महापुरुष, दामोदर देव तथा अन्य दूरदर्शी समाज सुधारकों द्वारा स्थापित स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से सतत प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा।
1: राज्य सरकार पर
0: मेरी सरकार राज्य के स्वदेशी लोगों एवं जनजाति समुदायों के अधिकारों, परंपराओं, भूमि और विरासत की रक्षा आत्मरोख्या देख रोखा जो डाक पोरे हे डाको तो डाक दे पोरी कोई पोरो तो अंबिकागिरी राय चौधरी जी ने कहा। जनजाति बेल्ट एवं ब्लॉकों की सुरक्षा, सामुदायिक भूमि अधिकारों का संरक्षण और स्वदेशी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय शासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। असम की सभ्यतागत मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता एवं समन्वित पहचान को संरक्षित करने वाली संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने वर्तमान सत्र में ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। यह सामाजिक सद्भाव, न्यायिक लैंगिक समानता और आधुनिक प्रगतिशील समाज को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय सदस्यगण, जनता से प्राप्त व्यापक जनादेश और पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर मेरी सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार किया है। इस दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र असम की युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना होगा। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य की युवा असम की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदारी बने। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है कि असम के प्रत्येक युवा को राज्य के विकास में योगदान देने और उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिले। जनता के व्यापक समर्थन से स्वीकृत संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुरूप पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में 2 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं तीव्र विकास को आगे बढ़ाएगी। इसमें कृषि, दुर्लभ खनिजों का खनन, विनिर्माण, सुपर क्रिटिकल तापी ऊर्जा, पंप स्टोरेज परियोजनाएं तथा अन्य उभरते उद्योग शामिल हैं। अंतरिक्ष, रक्षा, विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित उदयीमान क्षेत्रों और अत्याधुनिक तकनीकों पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही वित्तीय सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग और डाटा सेंटर जैसे सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ कर असम को क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस परिवर्तन की आधारशिला एडवांटेज असम 2.0 के पहले माध्यम से रखी जा चुकी है। 25 और 26 फरवरी के 2025 को आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान 5.18 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 3.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लगभग 60% परियोजनाएं उन्नत कार्यान्वयन चरण में हैं तथा कई परियोजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं। अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार इस गति को और आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सभी प्रमुख परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर उन्हें संचालित करने की प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उत्पन्न करना तथा ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना है जिससे असम की युवा अपने भविष्य और कैरियर को असम में बना सकें। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले 5 वर्ष में असम विकास यात्रा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने जा रहा है। राज्य पहली बार ऊर्जा अधिशेष राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। इस वर्ष में असम में विद्युत की अधिकतम मांग लगभग 3,100 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है और वर्ष 2031 तक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप इसमें और भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 3,200 मेगावाट सुपर क्रिटिकल तापी विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 4,200 मेगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत क्षमता वाली परियोजनाओं का निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त कई अन्य विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। ये सभी परियोजनाएं राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को उल्लेखनीय

रूप में आगे बढ़ाएंगे और असम को क्षेत्र का प्रमुख ऊर्जा केंद्र बनाएंगे। मेरी सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना का सफल क्रियान्वयन भी किया है। इस योजना के अंतर्गत असम देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उभरा है। 1.25 लाख से अधिक परिवारों ने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर लिए हैं, जिससे लगभग 410 मेगावाट स्वच्छ उत्पादन ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। राज्य की हरित ऊर्जा यात्रा को मजबूती मिल रही है। संतुलित और भविष्य उन्मुख ऊर्जा मिशन के माध्यम से असम उद्योगों और आवासों को विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। यह परिवर्तन न केवल औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि राज्य भर के लोगों के जीवन में स्तर में भी सुधार लाएगा। मेरी सरकार साक्ष्य आधारित योजना, संस्थागत सुधार और समावेशी विकास के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में शासन आधारभूत संरचना और मानव विकास में हासिल की गई प्रगति के आधार पर मेरी सरकार विकसित असम रोड मैप 2047 तैयार कर रही है, जो समृद्ध, टिकाऊ और वैश्विक प्रतिस्पर्धी असम की व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। अगले 5 वर्षों में डेटा आधारित शासन, जिला स्तरीय योजना और परिणाम आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों पर विशेष बल दिया जाएगा। जिला घरेलू उत्पाद का आकलन, जिला विजन दस्तावेजों की तैयारी तथा आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों पर निरंतर ध्यान विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को जोड़ने में सहायक होगा। सूचित नीति निर्माण और वास्तविक समय की निगरानी को और मजबूत करने के लिए मेरी सरकार नीति आयोग के सहयोग से राज्य डेटा विश्लेषण पोर्टल तथा विकसित असम स्ट्रेटेजिक रूम जैसे उन्नत डिजिटल शासन प्रणालियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखती। ये पहले तेज निर्णय निर्माण, बेहतर योजना क्रियान्वयन और विकास की प्रभावी समीक्षा में सहायक होगी। माननीय सदस्यगण, असम की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत और गतिशील विकास का प्रदर्शन कर रही। वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में 8.71 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि वित्तीय वर्ष में 2021-22 में यह 4.11 लाख करोड़ रुपये था। पिछले वर्षों में 5 वर्षों में रखी गई मजबूती की आर्थिक नीति के आधार पर मेरी सरकार अभी उपलब्धियों को सुदृढ़ करने तथा असम को 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी। वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के बाद मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में सुधारों को और गहरा तथा शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए ठोस रणनीति अपनाएगी। वर्ष 2025-26 में लगभग 85% तक पहुँचे बजट उपयोग को बेहतर क्रियान्वयन क्षमता, निगरानी और परिणामोन्मुख व्यय के माध्यम से और बढ़ाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना की मजबूत नींव तैयार की है। आने वाले 5 वर्षों में मेरी सरकार उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य, शहरी और संरचना और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में इन निवेशों का विस्तार किया जाएगा। राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोत वित्तीय वर्ष 2021-22 के 23,113 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 39,294 करोड़ रुपये हो गए हैं। यह कर सुधारों, उत्पाद शुल्क और अन्य राजस्व सृजन क्षेत्रों में सुधारों का परिणाम है। मेरी सरकार आंतरिक संसाधन जुटाने तथा दुर्लभ खनिज अधिशेष, विद्युत उत्पादन और अन्य उभरती क्षेत्रों के माध्यम से नए राजस्व स्रोत विकसित करने का कार्य जारी रखेगी। सरकार पारदर्शी प्रशासन, वैज्ञानिक अन्वेषण और सतत खान पद्धतियों के माध्यम से असम की खनिज क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार, चूना पत्थर खदानों की सफल नीलामी और रिकॉर्ड रॉयल्टी संग्रह ने औद्योगिक विकास और राजस्व वृद्धि की मजबूत नींव तैयार की है। अगले 5 वर्षों में आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रणाली के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। निवेश, रोजगार और राज्य के बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों को खोज, पारदर्शी नीलामी प्रणाली तथा खनिज ब्लॉकों के शीघ्र संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खनिज निष्कर्षण और परिवहन की निगरानी एवं वियमन को मजबूती करने के लिए एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंध प्रणाली लागू की जाएगी। खनन कार्यों में पारदर्शिता,

दक्षता और स्थिरता लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ड्रोन आधारित निगरानी और डिजिटल टैकिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इन पहलों से खनन क्षेत्र, औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और आंतरिक संसाधनों जुटाने का प्रमुख माध्यम बनेगा। साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास भी सुनिश्चित होगा। उत्पाद शुल्क विभाग पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन में सुधार करने, अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ाने के लिए लाइसेंस और अनुमतियां जारी करने के लिए निर्बाध, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियों के माध्यम से उत्पाद शुल्क प्रशासन का आधुनिकीकरण करेगा। मेरी सरकार पारंपरिक पेय पदार्थों को औपचारिक रूप देने, नियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक स्वदेशी पेय नीति शुरू करने की योजना बना रही है। पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में एंड टू एंड डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार आधारित सत्यापन और एकीकृत कल्याण वितरण प्लेटफार्म जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अगले चरण में लाभार्थियों तक समयबद्ध, लक्षित और पारदर्शी लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, शहरी अवसंरचना विकास निधि और अन्य संस्थागत वित्तीय तंत्रों ने असम में विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभव के आधार पर मेरी सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए 16वें वित्त आयोग की अयोध्या के दौरान वित्त पोषण चैनल के माध्यम से पर्याप्त निवेश हासिल करने का प्रयास करेगी। असम में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आने वाले वर्षों में मेरी सरकार इस राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाने के लिए कृषि, MSME, स्टार्टअप उद्यमियों और स्वरोजगार क्षेत्रों में संस्थागत ऋण सहायता का विस्तार करके इसे राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर ले जाने की दिशा में काम करेगी। अरुणोदय 3.0 जो अब लगभग 40 लाख लाभार्थी परिवारों को कवर करता है, राज्य में सबसे बड़े सामाजिक सहायता योजनाओं में से एक नंबर उभरा है। पहले से निर्मित मजबूत कल्याणकारी ढांचे के आधार पर मेरी सरकार सामाजिक सुरक्षा को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम वितरण प्रणाली और लाभार्थी प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करेगी। चाय उद्योग असम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत ऑर्थोडॉक्स और विशेषता वाली चाय के लिए लक्षित सहायता के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऑर्थोडॉक्स चाय के निर्यात में 40 मिलियन किलोग्राम की भारी वृद्धि शामिल है। अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार असम को प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स चाय के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करेगी, जिसका लक्ष्य कुल चाय निर्यात में ऑर्थोडॉक्स चाय का हिस्सा बढ़कर लगभग आधा करना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आपुन घर, आपुन वाहन, अभिनंदन और बीमा सहायता योजनाओं जैसी कल्याणकारी पहलों ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को सार्थक सहायता प्रदान की है। इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार संतुलित और राजकोषीय रूप में स्थायी तरीके से कर्मचारी कल्याण उपायों को मजबूत करना जारी रखेगी। असम को भारत के पूर्वी प्रदेश प्रवेश द्वार और पूर्वोत्तर के एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में बदलने के लिए मेरी सरकार 5 लाख करोड़ के निवेश दृष्टिकोण के साथ असम गति शक्ति मास्टर प्लान को लागू करने का प्रस्ताव करती है। अगले 5 वर्ष पूरे राज्य में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, शहर बुनियाद ढांचे और आर्थिक गलियारों में बड़े निवेश के माध्यम से असम के रणनीतिक लाभों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राजकोषीय स्थिरता और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य के अनुसार मेरी सरकार द्वारा भविष्य के वेतन संशोधन और कर्मचारी कल्याण से संबंधित उपयुक्त उपायों पर भी विचार किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार असम के लोगों, विशेष रूप से राज्य के जनजाति, आदिवासी, स्वदेशी और अन्य संरक्षित समुदायों की पहचान, भूमि अधिकार, सुरक्षा और संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में किए गए निर्णायक उपायों के आधार पर अगले 5 वर्ष स्वदेशी अधिकारों और जनसाक्षी की सुरक्षा के संरक्षण के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें वापस भेजने में तेजी लाने के लिए प्रवासी असम अधिनियम 1950 के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार राज्य की जनसंख्यिकी असंतुलन और सामाजिक

सांस्कृतिक स्वरूप की रक्षा के लिए वैध और निरंतर उपाय जारी रखेगी। मेरी सरकार लक्षित विकास पहलों और उन्नत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश और भारत भूटान सीमाओं पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण 140 सीमावर्ती गांवों को कवर करने वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। मेरी सरकार सीमा सद्भावना कार्यक्रमों, सीमा दर्शन पहलों, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने देने के लिए स्मार्ट मार्केट हब की स्थापना, अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में 24 पुस्तकालयों के निर्माण तथा बेहतर बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवाओं के साथ साथ सीमावर्ती गांवों को स्मार्ट मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के सीमावर्ती क्षेत्रों को और मजबूत करेगी, जिससे सीमावर्ती समुदायों का समावेशी विकास, लचीलापन और राज्य के विकास पथ के साथ मजबूत एकीकरण सुनिश्चित होगा। मेरी सरकार समान नागरिक संहिता के अधिनियम कार्यान्वयन की दिशा में भी कार्य करेगी। इस प्रकार की जनजाति, आदिवासी एवं स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों, प्रथाओं और सामाजिक संस्थाओं का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित हो, इसका उद्देश्य समानता एवं न्याय सुनिश्चित करना होगा। साथ ही असम के स्वदेशी समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक व्यवस्थाओं का संरक्षण भी किया जाएगा। स्वदेशी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, संगठित सीमा पर मवेशी तस्करी और सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून सम्मत शासन के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए एक विधायी और प्रशासनिक उपायों को मजबूत किया जाना जारी रहेगा। संवेदनशील युवाओं को चरमपंथी प्रभावों से बचाने और संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल भी स्थापित किया जाएगा। सरकार नागरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हाल के वर्षों में पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के आधार पर अगला चरण आधुनिकीकरण, सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी सक्षम पुलिसिंग प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। महिला पुलिस थानों, महिला हेल्प डेस्क, पिंक पेट्रोलिंग और 24/7 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के माध्यम से महिला केंद्रित पुलिसिंग पहलों को और मजबूत किया जाएगा। एक समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नशामुक्त ओखोम अभियान के विस्तार के माध्यम से नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाएगा। मेरी सरकार राज्य भर में अस्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास, कौशल विकास और सामाजिक आर्थिक एकीकरण के उपायों के साथ साथ विभिन्न शांति समझौतों के निरंतर कार्यान्वयन को जारी रखेगी। सरकार असम के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों के प्रति अपनी गहरा सम्मान भी दोहराती है और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान की मान्यता में उनके वंशजों के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय करेगी। सरकार राज्य भर में विशेष रूप से स्वदेशी, जनजाति और कमजोर समुदायों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और न्याय संगत भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 वर्षों में भूमि शासन में बड़े सुधारों ने भूमि अधिकारों की रक्षा करने और भूमि सीमाओं तक जनता की पहुंच में सुधार करने की एक मजबूत नींव रखी है। मिशन वसुंधरा के तहत 3.56 लाख से अधिक परिवारों 4.53 लाख भूमि पर स्वामित्व अधिकार दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के आधार पर अगला चरण गहरे सुधारों, तीव्र सेवा वितरण और प्रौद्योगिक संचालित भूमि प्रशासन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। मेरी सरकार राजस्व रिकॉर्ड के व्यापक डिजिटलीकरण और AI सक्षम व GIS आधारित प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत भूमि मूल्यांकन का उपयोग करके वैज्ञानिक पुनर्सर्वेक्षण के माध्यम से संपूर्ण भूमि प्रबंधन परिस्थितिक तंत्र को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव करती है। ये पहले नागरिकों के लिए आर्थिक अधिक पारदर्शिता, सटीकता, दक्षता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार जनजाति और समुदाय स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 3.2 लाख चाय बगान के परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के प्रयास जारी रखेगी। सामुदायिक भूमि की सुरक्षा और संरक्षित तथा परिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिक्रमण को रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सत्र भूमि और वैश्विक

संस्कृत विरासत के संरक्षण, जीर्णोद्धार और सुरक्षा के लिए सत्र आयोग के गठन के माध्यम से असम सत्र संरक्षण और विकास आयोग अधिनियम 2025 को भी क्रियान्वित किया जाएगा। मेरी सरकार भावी पीढ़ियों के लिए असम की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संस्थाओं को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार पारदर्शी, योग्यता आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित भर्ती प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 वर्षों में 1.64 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जिससे उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन की एक मजबूत नींव तैयार हुई है। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में 2 लाख अतिरिक्त सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। साथ ही खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उभारने की उम्मीद है, क्योंकि राज्य भर में बड़े निजी क्षेत्र के निवेश धरातल पर उतरने लगे हैं। सरकार कौशल विकास, औद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन पर केंद्रित करना जारी रखेगी तथा यह सुनिश्चित किया जा सके ताकि असम के युवा राज्य के व्यापक आर्थिक परिवर्तन में प्रमुख भागीदार बने। सरकार यह एक बार सुरक्षित, कटाव प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल असम के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव की कल्पना करती है। पिछले कुछ वर्षों में तटबंध के सुदृढ़ीकरण, नदी तट संरक्षण, जल ग्रहण प्रबंधन तथा आपदा न्यूनीकरण में बड़े निवेश ने पूरे राज्य में दीर्घकालिक जल और जलवायु सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। इस गति को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में 18,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ प्रस्ताव बाढ़ मुक्त असम मिशन के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह मिशन आधुनिक तटबंधों, मजबूत तटबंधों, उन्नत स्लुइस प्रणालियों, कटाव नियंत्रण उपाय और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के माध्यम से बाढ़ समस्या का निदान करेगा। साथ ही प्रमुख नदी प्रणालियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए एक व्यापक नदी पुनर्जीवन मिशन भी चलाएगा। सरकार कृषि लचीलेपन में सुधार और संवेदनशील परिदृश्यों के संरक्षण के लिए मिट्टी और जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। WDC, PMKSY तथा RIDF के तहत बड़े पैमाने पर जल ग्रहण विकास, वर्षा आधारित क्षेत्र उपचार, पहाड़ी जिलों में झरनों के जीर्णोद्धार और टिकाऊ भूमि प्रबंधन वालों ने असम भर में किसानों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया है और जलवायु सहनशीलता में वृद्धि हुई है। पर्यावरण के अनुकूल और प्रौद्योगिकी संचालित संरक्षण उपाय पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें नदी तट संरक्षण के लिए बांस आधारित बायो इंजीनियरिंग समाधान, आपदा शमन परियोजनाओं का विस्तार, अंतर्देशीय जल संपर्क तथा आर्थिक अवसरों पर मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विज्ञान सम्मत विकास शामिल है। इन पहलों से आजीविका बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और असम के लिए एक जलवायु अनुकूल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। सरकार किसान कल्याण की मजबूती एवं कृषि उत्पादकता वृद्धि पर बल दे रही है। पिछले 5 वर्षों में वित्तीय सहायता, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई और बाजार सुविधा में बड़े निवेश से राज्य में कृषि विकास की नींव तैयार हुई है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार कृषि यंत्रीकरण, जलवायु अनुकूल खेती तथा कृषि से संबंधित सुविधाओं को और मजबूत प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री कृषि हा हजुली योजना के तहत योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 11,000 रुपये की सहायता दी जाएगी तथा धान, मक्का और सरसों पर MSP सहायता तथा FPO और FPC को मजबूत करने से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल किसान पहचान पत्र और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर असम में आधुनिक कृषि की नींव रखी जा रही है। असम कृषि उन्नयन अभियान, एग्रोवोल्टाइक खेती, वैज्ञानिक बहुफसली खेती और डिजिटल कृषि उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहलें उत्पादकता बाजार को पहुंच को मजबूती प्रदान करेगी। सरकार असम की सिंचाई व्यवस्था को जलवायु अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। AI, GIS, रिमोट सेंसिंग, लाइडर मैपिंग और स्कैडा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग सिंचाई विस्तार और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र में असम ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2025-26 में मछली उत्पादन 33% से बढ़कर 5.54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। सरकार वैज्ञानिक मत्स्य पालन, आदभूमि के बेहतर उपयोग और मजबूत मत्स्य संरक्षा के माध्यम से उत्पादन को 10 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

हैचरी, कोल्ड चेन, एकीकृत मछली लैंडिंग केंद्र और एआई आधारित मछली बाजार जैसी परियोजनाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार मत्स्य उद्यमिता, महिलाओं की भागीदारी और मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा देगी और दीर्घकालिक विकास के लिए असम मत्स्य एवं जलीय कृषि नीति 2026-31 लागू करेगी। सरकार दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से दूध उत्पादन को 63.5 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ा करके 57 लाख लीटर प्रतिदिन लक्षण किया गया है। डेयरी, पोल्ट्री, सुअर पालन, बकरी पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया जाएगा। सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के तहत सरकार क्षेत्र को समावेशी विकास और सामुदायिक आर्थिक प्रगति महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। अगले 5 वर्ष में सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, तकनीकी एकीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक गांव एक सहकारी समिति युवाओं द्वारा संयुक्त सहकारी खेती और पैक्स के माध्यम से ऋण सहायता जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। डेयरी, मत्स्य और कृषि सहकारी समितियों को गांव स्तर की सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, एआई आधारित पशुपालन सहायता और पैक्स को कृषि सेवा केंद्रों में बदलकर मजबूत किया जाएगा। महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों, सहकारी बैंकिंग तथा इको टूरिज्म, परिवहन और होम स्टे आधारित सहकारी समितियों को बढ़ावा देकर राज्य में आत्मनिर्भर और समावेशी सहकारी व्यवस्था को विकसित किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मजबूत स्थानीय शासन, सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण तथा तकनीक पर आधारित जन सेवाओं के माध्यम से समृद्ध, समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण असम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण आवास, रोजगार सृजन, डिजिटल शासन और सामुदायिक विकास से जुड़ी प्रमुख पहलों ने राज्य में समग्र ग्रामीण परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार की है। इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में ग्रामीण असम में जीवन स्तर और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने हेतु पंचवर्षीय कार्य योजना ASRLM विजन 2031 के तेज क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 7.2 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण, पेयजल, स्वच्छता, LPG, बिजली और सौर ऊर्जा सुविधाओं के साथ प्रमुख प्राथमिकता बना रहेगा। संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए चाय बागान क्षेत्रों, चार चापोरी इलाकों, दूरस्थ गांव और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार समन्वित विकास मॉडल और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सतत आजीविका और ग्रामीण अवसंरचना को भी मजबूत कर रही है। आगामी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण आजीविका स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और आर्थिक अवसरों और सशक्त करेगा। मत्स्य पालन, डेयरी, सुअर पालन, बागवानी, बांस, शहद और उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों जैसी एकीकृत आजीविका गतिविधियों के साथ साथ अमृत सरोवरों और जलवायु अनुकूल सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास से ग्रामीण आय और पर्यावरणीय स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। डिजिटल ग्राम पंचायतों, नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों पर भी विशेष बल दिया जाएगा। ये इस गवर्नेंस प्रणालियों के विस्तार, AI आधारित निगरानी, ऑनलाइन नागरिक सेवाएं और डिजिटलकृत सामाजिक सुरक्षा सेवाएं जमीनी स्तर पर कार्यकुशलता और जवाबदेही को बढ़ाएंगी। साथ ही असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विजन 2031 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम, अखोमी ग्रामीण मार्ट वित्तीय समावेशन और लखपति बाईदेव जैसे पहले महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता को और मजबूत करेंगे। सरकार स्वस्थ, कुशल और भविष्य के लिए तैयार असम के निर्माण हेतु स्वस्थ सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य अवसंरचना, चिकित्सा संस्थानों, विद्यालयों और डिजिटल शिक्षा में निरंतर निवेश में राज्य में मानव संसाधन विकास की मजबूत नींव तैयार हुई है। स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। असम में मातृ मृत्यु दर 195 से घटकर 110 और शिशु मृत्यु दर 36 से घटकर 30 हो गई है। इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सार्वभौमिक टीकाकरण तथा असम शिशु सुरक्षा अभियान जैसी पहलों के माध्यम से कमजोर क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाएगा। निःशुल्क HPV टीकाकरण, चाय बगानों के अस्पतालों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में सुदृढ़ करने तथा योग एवं मातृशक्ति वाले स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों जैसे निवारक स्वास्थ्य

उपायों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य हमारी सरकार राज्य भर में चिकित्सा शिक्षा और उन्नत स्वास्थ्य और संरचना के बड़े विस्तार पर भी कार्य कर रही है। असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है, जबकि कई जिलों में नए संस्थान और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के पुनर्विकास, प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और मजबूत होगी। नवाचार आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीक आधारित चिकित्सा प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। भारत के पहले हम हब एंड स्पोक कैंसर केयर मॉडल, प्रस्तावित सरकारी प्रोटॉन थेरेपी सेंटर, AI आधारित निदान प्रणाली और स्वदेशी चिकित्सा तकनीकों जैसे पहले असम को स्वास्थ्य नवाचार और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। सरकार आधुनिक अवसंरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भविष्य उन्मुख कौशल के विकास माध्यम से विद्यालय एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल शिक्षा और शैक्षिक अवसंरचना में हालिया सुधारों को आगे बढ़ाते हुए अगले चरण में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत 1000 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत तथा स्टेम शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए एक एजुकेशन सिटी के विकास पर फोकस किया जाएगा। विद्यार्थियों के भविष्य के अवसरों और कैरियर के लिए तैयार करने हेतु कौशल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक चिंतन और छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार पर अधिक जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्टेम संस्थानों पर पारिस्थितिक तंत्र, उद्योग, अकादमिक सहयोग और वैश्विक स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा। कौशल उन्मुख पाठ्यक्रम, विदेशी भाषाओं का समावेश, रोजगार आधारित कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारियां असम की शिक्षा व्यवस्था और सशक्त बनाएंगी। राज्य की युवाओं को तेजी से बदलती और आपस में जुड़ी दुनिया में नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगी। मेरी सरकार बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से महिला एवं बाल कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में आंगनबाड़ी सेवाओं, मातृ स्वास्थ्य पोषण सहायता जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं राज्य में समावेशी विकास में मजबूती प्रदान की है। आने वाले 5 वर्षों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर विस्तार किया जाएगा और 20,000 केंद्रों में पोषण वाटिकाएँ बनाई जाएंगी ताकि बच्चों की देखभाल, शुरुआती शिक्षा और पोषण व्यवस्था बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संजीवनी पुष्टि किट जैसी योजनाओं के माध्यम से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य उद्यान अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराती रहेगी। अन्न सेवा दिन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी तकनीक आधारित व्यवस्थाओं से राशन प्रणाली, वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और प्रभावी बनेगी। महिलाओं के कल्याण, स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर पोषण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यरत महिला छात्रावासों का संचालन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत अधिक परिवारों तक LPG सुविधा पहुँचाना तथा MSP पर आधारित खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के परिवारों का जीवन स्तर, किसानों की आय और पोषण सुरक्षा में सुधार होगा। सरकार असम में सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 59 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर घर नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण असम के लगभग 82% क्षेत्रों को लाभ मिला है। अगले 5 वर्षों में 2028 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और हरित संरचना को भी मजबूत किया जाएगा। निर्माण अपशिष्ट प्रबंधन, बायोगैस और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी नई नीतियों के माध्यम से स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त असम का निर्माण किया जाएगा। सरकार वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। साथ ही नई असम वन नीति और अरण्य मिशन के माध्यम से वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण और वन संरक्षण को और मजबूत किया जाएगा। अवैध शिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गजमित्र योजना और आधुनिक तकनीकी की मदद से मानव हाथी संघर्ष को कम करने तथा पात्र लोगों को वन अधिकार अधिनियम का लाभ देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बांस, अगर बेत, वन उत्पाद और रेशम आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर हरित रोजगार, इको उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रकृति आधारित पर्यटन, वन्य जीव शिक्षा और संरक्षण जागरूकता कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जाएगा ताकि असम

को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के अग्रणी मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके। मेरी सरकार बेहतर संपर्क व्यवस्था, तेज आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सड़कों, पुलों और सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में राजमार्गों, पुलों और शहरी परिवहन में बड़े निवेश असम के विकास की एक मजबूत नींव तैयार हुई है। अगले 5 वर्षों में राज्यभर के सड़क और संपर्क सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी पुल जैसे प्रोजेक्ट से आवागमन में बड़ा सुधार हुआ है। वहीं धुबरी फुलबाड़ी पुल, गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, जोरहाट माजुली पुल और अन्य बड़ी परियोजनाएं राज्य और देश के बीच संपर्क और मजबूत करेंगी। PMJSY 4 असम के रेजिलियंट रूरल ब्रिज प्रोग्राम और असम माला योजना के माध्यम से ग्रामीण संपर्क और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही सड़क सुधार योजनाओं, फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिजों के निर्माण में यातायात काम जाम कम होगा और परिवहन व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। सरकार खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक संरचना को भी बड़े स्तर पर विस्तार कर रही है। खेल परिसरों के विकास, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज और मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण में जन सेवाओं और संसाधनों के विकास को मजबूती मिलेगी। सरकार असम को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ऊर्जा अवशेष राज्य बनाने के लिए बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और नवीनीकरण ऊर्जा में बड़े निवेश कर रही है। तापी जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से आने वाले वर्षों में बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा किया जाएगा। चापर में प्रस्तावित 3200 मेगावाट ताप विद्युत परियोजनाओं, लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना, कार्बी लौंगपी मिडिल 2 जल विद्युत परियोजना तथा अनेक और ऊर्जा परियोजनाएं विद्युत उत्पाद क्षमता को लेखनीय रूप से बढ़ाएंगी। साथ ही PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूट फॉर सोलर विस्तार आने वाले वर्षों में असम को स्वच्छ, सस्ती और सतत ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा। स्टार्टअप उद्यमिता, MSME कौशल विकास और बड़े निवेश असम की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, MSME प्रोत्साहन नीति और एडवांटेज असम 2.0 जैसी पहलों ने उद्योगों को विकास के और रोजगार सृजन को मजबूत नींव रखी। अगले 5 वर्षों में नवाचार, स्टार्टअप, विनिर्माण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अक्षय योजना, इनोवेशन सेल और असम स्टार्टअप समिट जैसे पहले स्टार्टअप व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हरित, तकनीकी, बायो प्लास्टिक और भविष्य उन्मुख उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर भविष्य के तैयार कार्यबल तैयार कर रही है। असम स्कूल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट मिशन और आधुनिक ITI इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और वैश्विक रोजगार अवसरों पर जोर दिया जाएगा। स्किल जनगणना, स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, मैरीटाइम स्किल सेंटर और सामुदायिक कौशल केंद्र युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयार करेंगे। CM फ्लाइट और गारुडा जैसे योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा। उद्यमिता और स्वरोजगार को असम की विकास नीति का मुख्य आधार बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर असम अभियान, जीवन प्रेरणा योजना, निजुत सिपनी और लखपति बाई देव जैसे योजनाएं युवाओं, महिलाओं और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी। सरकार औद्योगिकी शहरों के विकास, आर्थिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक और भूमि बैंक विकसित कर बड़े निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है। टाटा सेमीकंडक्टर परियोजना, नमरूप अमोनिया यूरिया परियोजना और नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार जैसी परियोजनाएं असम के औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगी। चाय, बांस, जूट, हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर मजबूत किया जाएगा। साथ ही एथेनॉल, पेट्रोकेमिकल, रक्षा विनिर्माण और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एक्ट ईस्ट नीति के तहत असम को पूर्वोत्तर भारत के विकास केंद्र में और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। व्यापार, लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाएगा। सरकार विज्ञान, तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास सुनिश्चित करेगी। असम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम और गुवाहाटी बायोटेक पार्क जैसी पहले वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टार्टअप और तकनीक आधारित विकास को मजबूती देंगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेहतर संरचना, स्वच्छ आवास और डिजिटल शासन के माध्यम से असम में टिकाऊ, सशक्त और नागरिक केंद्र शहरी विकास व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवीनीकरण ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, पुराने कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, फीकल स्लज ट्रीटमेंट सुविधाओं के विस्तार तथा डिजिटल नागरिक सेवाओं को मजबूत करने के माध्यम से शहरी परिवर्तन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जलापूर्ति परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। वहीं PMY अर्बन, PM स्वनिधि तथा शहरी महिला उद्यमियों को सहायता

जैसी पहलों ने आवास, सुरक्षा, आजीविका और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ किया है। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट विकास, इंटेलिजेंट सर्विलांस सिस्टम और स्वच्छ परिवहन पहल जैसी प्रमुख शहरी और संरचना परियोजनाओं ने शहरी विकास को और मजबूत किया है। मेरी सरकार जीआईएस आधारित मास्टर प्लानिंग, जल निकायों के पुनर्जीवन, बाढ़ नियंत्रण उपायों, सीवरेज एवं पेयजल नेटवर्क के विस्तार तथा शहरी प्रशासन प्रणालियों के आधुनिकीकरण के माध्यम से भविष्य उन्मुख शहरी असम के निर्माण की दिशा में कार्य जारी रखेगी। टिकाऊ शहरी विकास, शहरी पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, किफायती आवास और सुदृढ़ अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही गुवाहाटी मास्टर प्लान 2045, सेटेलाइट टाउनशिप, स्मार्ट सिटी पहल और व्यापक शहरी सेवा वितरण जैसी दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सभी नागरिकों के जीवन में सुधार किया जाएगा। सरकार असम में आधुनिक, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों, पुलों, शहरी परिवहन और संपर्क संरचना में बड़े निवेश ने राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूत नींव रखी है। अगले 5 वर्षों में स्वच्छ, आधुनिक और तकनीकी आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएमई बस सेवा योजना के तहत 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, वन डिस्ट्रिक्ट वन बस पोर्ट योजना के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुगम यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाली विशेष पिंक बसें भी शुरू की जाएंगी। असम की नदी प्रणालियों के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार अंतर्देशीय जल परिवहन और नदी आधारित संरचना को और मजबूत करेगी। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर के लिए प्रस्तावित वाटर पेट्रो प्रणाली पर्यावरण अनुकूल और एकीकृत परिवहन समाधान के माध्यम से शहरी परिवहन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। पांडु, जोंगी घोपा और बोगीबील में एकीकृत नदी लॉजिस्टिक्स हब, आधुनिक क्रूज टर्मिनल और विस्तारित नदी पर्यटन और संरचना ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के आर्थिक एवं पर्यटन क्षमता को और बढ़ाएंगे। साथ ही राज्य के जलमार्गों में सुरक्षित, विश्वसनीय और सुव्यवस्थित फेरी सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। माननीय सदस्यगण, हथकरघा, वस्त्र और रेशम उद्योग असम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य की परंपरा और पहचान से गहराई से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों को सहयोग देने, उत्पादन प्रणाली को आधुनिक बनाने तथा उनकी आजीविका मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। आने वाले 5 वर्षों में असम की हथकरघा और रेशम उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर जुड़ा हो सके। असम सिल्क मिशन और निजता हिपनी जैसी योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक बुनकरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही हथकरघा मॉडल गाँव और हस्तशिल्प केंद्रों का विकास किया जाएगा। ब्रांडिंग, ई मार्केट प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों तथा काजीरंगा और सुवालकुची की प्रमुख परियोजनाओं के जरिए असम के हथकरघा और रेशम उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार असम आंदोलन की भावना को बनाए रखते हुए असम समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से असम के लोगों की पहचान, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में धारा 6 की सिफारिशों को लागू करने, आंदोलन से प्रभावित परिवारों के कल्याण और शहीदों की स्मृतियों और बलिदान को सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगले 5 वर्षों में असम समझौते के प्रमुख प्रावधानों को तेजी से लागू करने तथा असम की भाषा, संस्कृति, स्वदेशी पहचान की रक्षा के लिए और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सरकार धारा 6 संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने और असमिया लोगों के अधिकारों एवं विरासत की सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को और मजबूती करेगी। असम आंदोलन के शहीदों की स्मृति में बनाए जा रहे शहीद स्मारक क्षेत्र पार्क को आधुनिक संग्रहालय, लेजर लाइट एवं साउंड शो, सभागार और सौंदर्यीकरण के माध्यम से ऐतिहासिक कस्बों और सांस्कृतिक गौरव के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही आंदोलन से प्रभावित परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं भी जारी रहेंगी। असम के स्वदेशी परंपराएं, जनजाति विरासत, आध्यात्मिक संस्थान, साहित्य, कला और खेल संस्कृति राज्य की सबसे बड़ी ताकतों में से है। पिछले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास, विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन और जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास के माध्यम से इन क्षेत्रों को संरक्षित, बढ़ावा देने और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इस नींव पर आगे बढ़ते हुए अगले 5 वर्षों में असम को अपनी अनूठी सभ्यागत पहचान को बनाए रखते हुए देश के एक प्रमुख सांस्कृतिक, पर्यटन और खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विरासत स्थलों, संग्रहालयों, पुरातत्वों स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धारों के साथ साथ पांडुलिपियों, अभिलेखिक रिकॉर्ड और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के प्रयास जारी रहेंगे। शिव सागर और कार्बी आंगलोंग तथा दीमा हसाओ के मेगोलिथिक परिदेशों सहित असम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के वैश्विक मान्यता

सुरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। सरकार समर्पित संरक्षण और संवर्धन महिलाओं के माध्यम से स्वदेशी और जनजातीय संस्थाओं, आस्थाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक संस्थानों को मजबूती करना भी जारी रखेगी। त्यौहारों, सांस्कृतिक आदान प्रदान, संग्रहालयों और विरासत परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि असम की विविध सांस्कृतिक पहचान भविष्य की पीढ़ियों के संरक्षित और उत्सव के रूप में मनाई जाए। खेल के क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में स्टेडियम, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और खेल आयोजनों में बड़े निवेश ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए एक व्यापक खेल नीति, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम के विस्तार, जिला खेल अकादमियों की स्थापना, खेल छात्रवृत्ति, राज्यभर में एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से खेल महारण के आयोजन के माध्यम से खेल विकास के अगले चरण का मार्गदर्शन करेगी। पर्यटन आर्थिक विकास, रोजगार और सांस्कृतिक पहुँच का एक प्रमुख चालक बना रहेगा। धार्मिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन हालिया में प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में बौद्ध सर्किट को मजबूत करने, अमर अलोही ग्रामीण होम स्टे पहल का विस्तार करने और असम को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आयोजन आधारित पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित किया जाएगा। कंसर्ट पर्यटन, हेरिटेज सर्किट और समुदाय आधारित पर्यटन पहले से आजीविका को और मजबूती मिलेगी तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर असम की एक दृश्यता बढ़ेगी। सरकार असम के सांस्कृतिक उद्योगों, सिनेमा, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कलाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। प्रस्तावित असम ऐतिह्य संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव, असमिया सिनेमा के प्रचार, डिजिटल सांस्कृतिक मंचों और कलाकार कल्याण प्रणालियों को मजबूत करने जैसे पहल असम की कलात्मक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करेगी। दिसंबर 2024 में बराक घाटी के विकास विभाग का गठन, कछार, हैलाकांडी और श्री भूमि के जिलों के क्षेत्र में विशिष्ट और त्वरित विकास के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिलचर में बराक घाटी सचिवालय की स्थापना के नए क्षेत्र में अत्यधिक समन्वित योजना, केंद्रीय शासन और विकासात्मक पहलों के तेजी से कार्यान्वयन की नींव रखी है। दशकों तथा बराक घाटी अपनी अपार सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्ता के बावजूद उपेक्षा तथा अपर्याप्त विकासात्मक ध्यान की भावना को अनुभव किया है। इस दीर्घकालिक चिंता का समाधान करते हुए वर्तमान सरकार ने क्षेत्र के असंतुलित, समावेशी एवं तीव्र विकास केंद्रित तथा क्षेत्र विशिष्ट पहलों के माध्यम से अपने दृढ़ प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। दिसंबर 2024 में बराक घाटी विकास विभाग की स्थापना, कछार, हैलाकांडी और श्रीभूमि जिले के समग्र योजनाबद्ध विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल सिद्ध हुई है। इस प्रयास को और अधिक सुदृढ़ करते हुए सिलचर में बराक घाटी सचिवालय की स्थापना ने उत्तरदायी एवं जन केंद्रित शासन व्यवस्था को नई गति प्रदान की है। इसके माध्यम से प्रशासनिक समन्वय को सशक्त बनाने, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र नीति निर्माण सुनिश्चित करने तथा विकासात्मक परियोजनाओं को प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार तैयार हुआ। यह पहल बराक घाटी के लोगों की आकांक्षाओं को नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ क्षेत्र को प्रगति, सुशासन और समावेशी विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर कर रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य सिलचर में एक असम, पूर्ण असम सचिवालय की उपस्थिति को क्रियाशील करना, श्री भूमि में एम्स का एक सैटेलाइट केंद्र स्थापित करना और डोलू में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास में भी तेजी लाना भी है। इन पहलों से कनेक्टिविटी, निवेश, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आर्थिक अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे बराक घाटी का समावेशी और निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। माननीय सदस्यगण, सरकार असम में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के सामाजिक न्याय, न्याय संगत प्रतिनिधित्व और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में असम पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। अगले 5 वर्षों OBC और MOBC श्रेणियों के तहत पात्र समुदायों की मान्यता, समावेशन और कल्याण से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। असम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय OBC सूची में कई समुदायों को शामिल करने, चाय तथा पूर्व चाय बागान समुदायों को MOBC का दर्जा देने की पहलों के माध्यम से भी पहले महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा चुकी है। सरकार पिछड़े वर्गों की श्रेणियों में तहत में शामिल होने की मांग करने वाले विभिन्न समुदायों के लंबित दावे को समय पर भी जाँच कर और निपटान की दिशा में काम करना जारी रखेगी। साथ ही समाज के पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के शैक्षणिक अवसरों, कल्याणकारी उपायों, कौशल विकास और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण तथा अधिक पहुंच सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार असम के सभी भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों में संतुलित, समावेशी एवं क्षेत्र विशिष्ट विकास सुनिश्चित करने के प्रति निरंतर सजग और प्रतिबद्ध रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने

पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजाति बेल्टों, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से समावेशी न्याय संगतियों सहभागी विकास के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। सशक्त स्वायत्त परिषदों, विशेष विकास कार्यक्रमों तथा लक्षित कल्याणकारी पहलों के माध्यम से इस ऐतिहासिक में उपेक्षित क्षेत्र में अवसंरचना के आधुनिकीकरण, आजीविका के अवसरों के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच तथा अधिक प्रभावी पारदर्शी उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई है। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र को समान अवसर, सम्मानजनक भागीदारी तथा विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय संतुलन, सर्वसमावेशी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ असम की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। हम हालिया प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्ष मजबूती बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका पहलों के माध्यम से कॉर्बी ओंगलोंग और दिमा हसाओ के त्वरित विकास पर केंद्रित करेगी। सतत आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए स्वदेशी आस्थाओं, भाषाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और सामुदायिक संस्थानों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाने जारी रहेगा। बोडो समझौता 2020 का कार्यक्रम क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी और भावना के साथ जारी रहेगा, जिसमें बोडोलैंड क्षेत्र में स्वायत्तता, शासन के बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास को मजबूत करने पर आधारित ध्यान दिया जाएगा। सड़कों, पुलों और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की विस्तार, जिसमें उदलगिरी में BTC मिनी सचिवालय का संचालन शामिल है, से शासन तक पहुंच, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय समृद्धि में और सुधार होगा। सरकार शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और आजीविका में केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से चाहे जनजातियों और आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। छात्रवृत्तियाँ, सामुदायिक बुनियादी ढांचा, महिला केंद्रित कल्याणकारी पहल और चाहे जनजातिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आने वाले वर्षों में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। मैदानी इलाकों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक अवसरों के विस्तार, आजीविका सृजन, वन अधिकार अधिनियमों के कार्यान्वयन और स्वायत्त परिषदों तथा विकास परिषदों को मजबूत करने के माध्यम से केंद्रित प्रयास जारी रहेंगे। समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करते हुए जनजाति रियासत, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और स्वदेशी प्रथाओं को संरक्षित करने पर भी अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालन माध्यम से, शासन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी विकास के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। कौशल विकास, छात्रवृत्ति, आजीविका सहायता, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और बेहतर तीर्थयात्रियों सुविधाओं को मजबूत करना जारी रखा जाएगा, जिसमें राज्य भर के गोरिया, मोरिया, देशी, जोल्हा और मैमल समुदाय सहित स्वदेशी अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि एक मजबूत, स्वतंत्र और उत्तरदायी नेपाल का ही एक जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है तथा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए ये समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ न्याय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन एवं सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में पूरे असम में न्यायिक संरचना के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिक सक्षम न्याय प्रणाली विकसित की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस आधार को आगे बढ़ाते अगले 5 वर्षों तक नागरिक केंद्रित प्रौद्योगिकी संचालित न्यायिक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रंगमहल गुवाहाटी में अपनी तरह की एक पहली न्यायिक टाउनशिप के साथ नए न्यायालय भवन, आवासीय परिसर, कमजोर गवाहों के लिए सुविधाएं, कानून सहायता केंद्र और NDPS अदालतों सहित विशेष अदालतों के न्यायिक बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी और राज्य भर में न्याय तक पहुंचने में सुधार करेगी। मेरी सरकार न्याय वितरण को तीव्र, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाने के लिए ई कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई, ई फाइलिंग, ऑनलाइन सेवाओं, AI सक्षम न्यायिक प्रणालियों को विस्तार करना जारी रखेगी। अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल कैस्टेटिंग, निर्णयों को असमिया में AI सहायता प्राप्त अनुवाद और उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म के एकीकरण जैसी प्रशासनिक पहलों से आने वाले वर्षों में असम प्रौद्योगिक सक्षम न्यायिक प्रणाली में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में परिवर्तित होने की उम्मीद है। सरकार नागरिक पहुंच, जागरूकता सृजन और शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के संचालित प्रणालियों को तेजी से लाभ उठा रही। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के सहयोग से सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, नागरिक जुड़ाव में सुधार करने के लिए अग्रणी डिजिटल जनसंपर्क अभियान शुरू किए गए। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए

अगले 5 वर्षों उन्नत प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल शासन संचार नीति आउटरीच और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पारदर्शिता दक्षता और सार्वजनिक जानकारी के वास्तविक समय में प्रसार बढ़ाने के लिए डिजिटल संग्रह ऑनलाइन मान्यता सेवाएं विज्ञापन पोर्टल और AI आधारित संचार प्रणालियां शुरू की जाएंगी। मेरी सरकार पत्रकारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। लोकतांत्रिक समाज में मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए पत्रकार चिकित्सा कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता और वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन सहायता को मजबूत करना जारी रखा जाएगा। मेरी सरकार शासन को मजबूत करने, नागरिक सेवा वितरण में सुधार करने और डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी को लाभ उठाने पर केंद्रित रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मों और नागरिक केंद्रों के सुधारों के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण में एक बड़ी प्रगति हासिल की गई है। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में सेवा सेतु को अगली पीढ़ी के AI सक्षम नागरिक सेवा मंच में बदलने और सरकारी सेवाओं के पारदर्शी समयबद्ध और जवाबदेह वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मजबूत राज्य डेटा केंद्र बुनियादी ढांचे के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के लिए AI संचालित शिकायत निवारण प्रणाली और उन्नत डिजिटल उपकरण भी पेश किए जाएंगे। असमिया बोडो बंगाली कार्बी और अन्य स्वदेशी भाषाओं के लिए AI सहायता प्राप्त अनुवाद भाषण प्रौद्योगिकों और हस्तलिपि लिपि पहचानों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये पहल न केवल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेंगी बल्कि असम की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने बढ़ावा देने और उस तक पहुंच का विस्तार करने में मदद करेगी। मेरी सरकार एक पारदर्शी कुशल प्रौद्योगिकी संचालित तथा नागरिक केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण के लिए सतत रूप से प्रतिबद्ध है जो तेजी से प्रगति कर रही है। असम की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने सुशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पेंशन प्रशासन शिकायत निवारण प्रणाली डिजिटल गवर्नेंस तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी सुधार लागू किए हैं। डिजिटल प्लेटफार्मों के निरंतर एकीकरण प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा सेवा तंत्र के आधुनिकीकरण के माध्यम से शासन प्रणाली को आधुनिक अधिक प्रभावी पारदर्शी उत्तरदायी और जनोन्मुख बनाया गया है। कृतज्ञता पोर्टल जीवन प्रमाण ऑनलाइन RTI प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी सक्षम शिकायत निगरानी मंचों जैसी पहलों ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी जवाबदेह और जनमुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पहलों के माध्यम से नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं पहुंच से अधिक सहज और त्वरित और प्रभावी हुई है। डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के निरंतर विस्तार प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों के व्यापक उपयोग के परिणाम स्वरूप आज असम नागरिक केंद्रित शासन और प्रभावी शिकायत निवारण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपने विशेष स्थान स्थापित कर चुका है। इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए शासन सुधारों को अगला चरण विकसित असम 2047 और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक अत्यधिक पेशेवर भविष्य के लिए तैयार और नागरिक उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। असम मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन पर विशेष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा है जिसमें 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी iGOT प्लेटफॉर्म पर शामिल हुए हैं। सक्रिय भागीदारी तथा पाठ्यक्रम पूरा करने में सर्वोच्च राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल है। 5 वर्षों में 1.64 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पहले ही प्रदान की जा चुकी। अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों के सरकारी सेवाओं में शामिल होने की उम्मीद है। योग्यता आधारित क्षमता निर्माण डिजिटल प्रणालियों AI सक्षम शासन उपकरणों और निरंतर प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य एक आधुनिक कुशल और प्रेरित कार्यबल तैयार करना है जो उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं देने और असम के दीर्घकालिक परिवर्तन को गति देने में सक्षम हो। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विकेंद्रीकृत कुशल और नागरिक केंद्र शासन के माध्यम से प्रशासन के लोगों को करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के पिछले कार्यकाल के दौरान असम ने सह जिलों के निर्माण और संचालन के माध्यम से अपनी तरह का पहला प्रशासनिक सुधार किया है जिससे जमीनी स्तर पर शासन मजबूत हुआ और राज्यभर में सार्वजनिक सेवाओं में वितरण के में सुधार हुआ। इस परिवर्तनकारी पहल को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्ष असम भर में

सह जिला प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने तथा विस्तारित कार्य करने पर केंद्रित करेंगे। उन क्षेत्रों को छोड़कर जो छठी सूची अनुसूची और बोडोलैंड क्षेत्रीय के अंतर्गत आते हैं, जहां अलग संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत हैं, इन संस्थानों को मजबूत बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और डिजिटल गवर्नेंस प्रणालियों को सशक्त बनाया जाएगा, ताकि नागरिकों के घर तक सरकारी सेवाओं को तेजी से और अधिक सुलभ डिलीवरी सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की परिकल्पना है कि मजबूत सह जिला प्रशासन जिला प्रशासकों को मैक्रो स्तर की योजना विकास और शासन पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाए, जबकि क्षेत्र स्तर पर स्थानीय मुद्दों का त्वरित समाधान और बेहतर नागरिक जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। स्वागत सतीर्थ 2.0 जैसी पहलों ने प्रौद्योगिकी सक्षम शासन सुधारों के माध्यम से उत्तरदायी प्रशासन और कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पहले ही प्रदर्शित किया गया। सरकार राज्य नागरिक पुरस्कार और लोक सेवा पुरस्कार जैसी पहलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता को मान्यता देना भी जारी रखेगी। इसके साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले करने वाले मरीजों और नागरिकों के लिए अधिक सहायता प्रणालियां, जिनमें बेहतर असम भवन सुविधाएं, ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली और समर्पित शटल सेवाएं शामिल हैं, नागरिक कल्याण और सार्वजनिक सुविधा को और मजबूत करेगी। माननीय सदस्यगण।

0: सतीर्थ 2.0 जैसी पहलों ने प्रौद्योगिकी सक्षम शासन सुधारों के माध्यम से उत्तरदायी प्रशासन और कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पहले ही प्रदर्शित किया गया। सरकार राज्य नागरिक पुरस्कार और लोक सेवा पुरस्कार जैसी पहलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता को मान्यता देना भी जारी रखेगी। इसके साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले करने वाले मरीजों और नागरिकों के लिए अधिक सहायता प्रणालियां, जिनमें बेहतर असम भवन सुविधाएं, ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली और समर्पित शटल सेवाएं शामिल हैं, नागरिक कल्याण और सार्वजनिक सुविधा को और मजबूत करेगी। माननीय सदस्यगण, असम आज अपने इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और शासन के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों में रखी गई मजबूत नींव के राज्य के लोगों को एक नया विश्वास और नई आकांक्षाएं पैदा की हैं। अगले 5 वर्ष समावेशी विकास, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरणीय स्थिरता और समाज के हर वर्ग के लिए अवसर सुनिश्चित करके इस गति को स्थायी प्रगति में बदलने के लिए समर्पित होंगे। पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक, बराक घाटी से लेकर बोडोलैंड तक, हमारे चाय बागानों से लेकर हमारे शहरी केंद्रों तक, हर क्षेत्र में हर समुदाय असम की इस परिवर्तन यात्रा में बराबर का भागीदार होगा। बिरान हो वार हो मानियो हो दस्तो हो कोल महापुरुष श्रीमंतो होंकोर देवर आगोखोर रे अनुप्राणित हो गुरु जोनार हमजिक हौहार्द होता आरु हामिक कल्याण और भावन होई ओखम और होमाज सांस्कृतिक जीपाल कोरी राखी से गुरु जोनार आखिक लोई मोर सरकारे होमाजोर होकोलोर श्रेणीर कल्याणोर बाबे अविराम काम कोरी थाकिबे होकोलोरे मंगल होकोलोरे उन्नति महापुरुष श्रीमंतो होंकोर देवर परिकल्पना आसिल साहित्य होयतरोधी लक्ष्मीनाथ बेज बरुवार कालजेई कवितार जोरी होते कोइसिल जे आमी ओखोमिया न हो दुखिया आमी ओखोमिया न हो दुखिया किहोर दुखिया हूँ होकलू आसिल होकलू आसे नोबलू नुबजू नोलों गोम होंकरे दिले बिखुद्ध धोरोम लासिते बाहुत बोल होती जोय मोती होतित्व तेजेरे ओखोमी आई प्रबोल बाजुक दोबा बाजुक होंको बाजुक मृदंग खुल ओखम आको उन्नति पोथोत जो आई ओखम बुल। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। इसी भावना के साथ इस असम के लोगों का तथा इस गरिमामय सदन की सामूहिक शक्ति के साथ हम विकसित भारत 2043 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक समृद्ध, शांतिपूर्ण, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित असम के निर्माण की दिशा में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। चरैवती चरैवती, निरंतर आगे बढ़ते रहना। मूर देश मूर असम, प्रगति, एकता और आत्मगौरव की एक नई यात्रा की दिशा में आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस गरिमामयी सदन में अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। जय आई ओखम, जय हिंद।
1: माननीय राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डांगरियाए तेखेतर भाषण सामरिले।
2: অসম বিধানসভার প্রক্রিয়া আর কার্য পরিচালনার নিয়মের নিয়ম 176-1 অধীনত মাননীয় রাজ্যপাল ডাঙরিয়ায় তেখেতর ভাষণ ইতিমধ্যে প্রদান করলে আর এই ভাষণের প্রতিলিপিও ইতিমধ্যে সদনের মেজত রখা হয়েছে। তেখেতলে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো।

नमस्कार। सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर देवेंद्र के साथ आकाशवाणी की ओर से। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह।

0: उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais, and now we have the welcome address by the DG of BSF Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ से
2: महिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the desk addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष

0: विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में BSF ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु BSF पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब BSF डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक।

0: बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
0: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
3: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है।

0: आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
1: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
2: And now the awards are going to be given to all the people for their gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
3: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें।
1: माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं एंड नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। He walks to the podium.
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज

मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई। और जब से BSF की स्थापना हुई है, सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम BSF ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृहमंत्री पदक भी हमारे जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी BSF की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद BSF को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा

डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नार्कोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल

0: एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: हेलो एवरीवन टू इवन टू द होम
2: मिनिस्टर
3: बाय द डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री प्रवीण कुमार।
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल

0: आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का। इसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে এক বজাত হিন্দীত আৰু এক বাজি পাঁচ মিনিটত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत

0: गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
0: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The seats are vacated by Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar and AIADMK MP CV Shanmugam, who were recently elected to the State Assembly. The by-poll will also be held on the 18th of next month. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border Project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Forces security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. The Home Minister said the security of international borders must be viewed as a broader territorial responsibility rather than an isolated task to tackle

0: India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु

0: होगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने

0: आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव

0: घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: হাতীৰ মহাবাহু এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे,
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना
0: ठीक है
1: सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं, इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध
1: जी
0: भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश, छाया
0: जी जी जी
1: गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे
1: है।
0: बात
1: जी
0: करके। और अच्छा, ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है,
1: बिल्कुल, खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से
1: नहीं
0: खेल
1: मैं
0: पसंद के होते थे?

0: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
1: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
0: निकालना पड़ता है थोड़ा,
1: जी
0: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
1: जी
0: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
1: क्या बात है, आप
0: जी
1: हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह।
0: जी
1: और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
0: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा,
1: क्या बात है
0: किनारा फिल्म से है।
1: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है, नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि
0: जी
1: आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
0: जी बिल्कुल नाम।

0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैम, मैं डॉली बोल रही हूँ भोपाल से।
0: डॉली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम, इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से
0: जी,
1: सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
1: गर्मी से बचने के लिए देखो, प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं।
0: जी जी जी
1: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ, जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है
0: जी
1: या दही की लस्सी है, ये पीते हैं सब। ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराई मिलती है
0: क्या
1: पीने
0: बात है।
1: से।
0: और आम का पन्ना नहीं बनाती आप?
1: मैम, आम का पन्ना नहीं बनाते हैं हम। सिर्फ जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो
0: जी
1: आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के, जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
0: जी
1: और मेरी सास का नाम सुमन है,
0: जी
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है। और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी
0: जी
1: माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये
0: जी
1: है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1, 2, 4, माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी। मेरा नाम आशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है,
0: जी
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का बोल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, आपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग सहेली और ये लोग फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है। आज
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादिया मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादिया मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो
0: जी
1: सहेली में आकर।
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी
1: और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे,
0: जी
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए
0: जी
1: मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: तो हमारे
1: हाँ
0: विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन
1: हाँ
0: से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी,
0: जी
1: छाया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात
1: हाँ,
0: है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक
0: जी
1: कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ,
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली यानी स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजुल सी सरलता।
0: क्या बात।
1: धन्यवाद।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: छेलू सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल।

वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़क कर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का यह सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे।

कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो यह है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहां क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूं, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवा

आया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल

जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

अब मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरी बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

मिनटों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आजा की रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है। तेरी एक झलक को तरसती हैं ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया? बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया? हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी

0: के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
2: Bharat aur Cyprus ke beech ye strategic partnership dono deshon ke financial aur services hub ko jodkar commerce ke liye capital unlock karegi. Ye Cyprus ke infrastructure, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: President of Cyprus Nikos Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. The President of Cyprus is on a 4-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening.

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Indian Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
2: आज हमने ग्लोबल इश्यूज पर भी चर्चा की, यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है।
1: President of Cyprus Nikos Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela tomorrow morning through video conferencing. Mr. Modi will also address a gathering on the occasion. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu.

0: শ্ৰোতাই ইমান পৰে বিহুগীতকেইটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী তেজপুৰ। খন্তেক পাছতে 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা 9:00 News@9 আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা শুনিবলৈ পাব। তাৰ ঠিক পাছতে 9:15 আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা শুনিবলৈ পাব বিধানসভাত আজিৰ দিনটো।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

0: दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की

0: बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12

0: 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का

फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।